दे देना मानो बात हमार हो, इतना कह के चला तो कानन पहुंचा लंक मझार हो। अरे उधर विधाता ब्रह्म लोक में सोच मन के मार हो, दस कंधर का रूप पकड़ झट गई न सिंधु किनार हो।

नहीं पहचानी थी वीर थमाई बगसा उठन रागो मछली जानी बगसा ले ब्रह्मा जी जरल जट कौशल्या महारानी जी वन के बीच में रख के ब्रह्मा गई ने अपने राजधानी में सुमंत पहुंचे रतलहरी।